0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रूपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मुंगारू हंगामिन बेले वीमे नोंदणी माडिकोळ्ळिरि।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम वन केंद्र ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.samrakshane.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ।

0: शिवालाल के लगा एक अनुभारी अरे क्या बोलता हूँ मैं ढालिया से वो ढालिया ने कहा कि मैं डिप्लोमा खा लेकिन क्या डिप्लोमा के लगा थोड़ा मार लेकिन क्या तो लाखों सी आदमी दिख रहा है वो से
1: ये नाम वेत्ते का है कोबापुर
0: वेत्ते रे भगवान

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रूपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मुंगारू हंगामिना बेले विमेगागी ईग नोंदणी माडिकोळ्ळिरी।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम वन केंद्र ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.samrakshane.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ।

0: डाउ केरे रे बाबू ताडे हिना नाही शिवालाल के लागो ए कड़भारी अरे को तंड में ढालिया से वो ढालिया का के में डपला खा लेकिन के डपला के लागो ठोल मार दे लेकिन के
1: हां
0: तो लागू सी आदमी दिख रिया हो से
1: ए नाम एते का को बापू
0: वे तेरे भगवान
1: हां

गाले ढोल मारो रे नंगरे माहिरे ना लाकुसी गोड़ा जगे बापू ताने मोटियार ना

0: चक्री पगड़ी बांध रे बाबू हा बाबा दुराई ए हा बाबा दु चक्री पगड़ी बांध लो कला गो कंदे पर थती खा लो कला गो तणो तण के तुम छोरी बुलाए जाओ
1: रात रो टुवाल घर में ले चाहिए
0: घर में ले रे भगवान
1: हां हां।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रूपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मुंगारु हंगामी ना बेले वीमे गागी ईगा नोंदणी माडिकोळ्ळिरि।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम वन केंद्र ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.samrakshane.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ।

0: ए भाया काय नींद आ रही रे भाया उठल बैठ गए रे भाया
1: आनो यारी तू
0: काय के दिए यारी के दे तू माना सेवा लाल बेटे जे रे बाबू लेके छाया मनाई
1: ढाटी ढाटिया।

0: डाव केलं रे बाबू ताडे होणार नाही शिवालाल केला गो ए कडभारी अरे गो तंड में ढालिया से वो ढालिया का के में डपला खा लेकिन के डपला का ठोल मार दे लेकिन के
1: हां हां
0: तो लाखुसी आदमी दिख रहा हो से
1: ये नाम इतने का को बापू
0: वे तेरे भगवान
1: हां

0: चक्री पगड़ी बंद रे बाबू हा बाबा दुराई ए हा बाबा दु चक्री पगड़ी फल लगला गो कंदे पर धोती खा लो अरे कला गो तणो तण के एकदम छोरी बुलाए जाओ
1: रात रो टुवाल घर में ले चाहिए
0: घर में ले रे भगवान
1: हां हां।